0: What's up, man? This is Scott Morris, and make sure you tune into YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: Tú puedes ser un héroe al estar preparado para una emergencia. Primero, prepara un plan. Reúne a tu familia para planificar formas de cómo comunicarte con tus seres queridos después de una emergencia o planear una ruta de escape.
2: I am not fast.
1: Prepara un equipo de suministros. En caso de una emergencia, es importante contar con suficientes alimentos para 3 días. Y no te olvides de las pilas. Visita ready.gov/niños para obtener más información. Patrocinado por FEMA y the Ad Council.
3: Hello, my name is Kamel Ellis, and I host the show with my co-host, Ms. Lisa Ray, Radio 1 World Fest Global at YC Radio Studios, located at York College, the City University of New York in Jamaica, Queens. Radio 1 World Fest Global airs every second and fourth Thursday at 6 p.m. Eastern Standard Time. You can listen to us on the TuneIn app or TuneIn.com and search YC Radio. You can call us even on our hotline at 718-262-5294 as we discuss topics that affect us locally and globally. Don't forget, Radio 1 World Fest Global airs every second and fourth Thursday at 6 p.m. Eastern Standard Time. Check us out on the TuneIn app or TuneIn.com where you search YC Radio. Call us on our hotline, 718-262-5294 as we discuss issues that affect us globally and locally. Have a good day. See you soon.
4: Dhoka dhadi chetavani. Apna khyuni login password ya MAF. A. Kabhi saajha na kare. Kripya nimnalikhit baato ko yaad rakhe. Apne password ya MAF. A. Karko ko kabhi bhi kisi ke saath saajha na kare. कैंपस और क्यूनी आईटी आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा। यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी एमएफ ए अनुरोध का उत्तर न दे। संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें। यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या एमएफ ए कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें। यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है।
5: What's good, y'all? Sugar K Goddess, and you are now listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.